0: तस्यैतद्व्रतम्
1: तस्यैतद्व्रतम् तस्यैतद्व्रतम्
0: वर्षति न धावेत्
1: वर्षति न धावेत् वर्षति न धावेत्.
2: विल नौ रिवाइज दिस पैराग्राफ अगेन चैंटिंग ईच सेंटेंस ट्वाइस.
1: वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति शृणुत एनम्
0: तेजस्का.

0: ग्रंचिनुते यौचैनमेवं वेद यौचैनमेवं वेद.
1: नौ विल रिवाइज दीज थ्री अनुवाकास स्टार्टिंग फ्रॉम वृष्टिकामश्चिन्वित. This is the Samhita part of, without repeating the sentence, we'll just chant the Samhita part together.

जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर चुग चुगै प्रभावै सरवर में हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सह समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिवलाई।

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिलै मिलिया प्रवान नात स्मरण न आवण जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिलै मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घड़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पयावै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए।